0: तक मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के इंतजाम को बढ़ाने में साबित कदमी से आगे बढ़ रहा है। इसी सिस्टम की गई आजमाइश में रॉकेट सार की तरफ से तैयार करदा ड्रोन 300 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए 250 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर मौजूद हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आजमाइश के दायराकार में ठेकेदार वाकया चोर पर वास तरबीती और आजमाइश सेंटर से उड़ान भरने वाला अखंजी बोरास्कत में वाकया टेस्ट इलाके तक पहुंचा। स्नोक के सहायक का करीब अंजाम दिए गए टेस्ट में समंदर पर मौजूद हदफ को अखंजी से निशाना बनाया गया। इससे कब 122 और 230 नाम के सुपरसोनिक मिसाइलों का इंजाम कामयाबी के साथ सर अंजाम दिया गया था। 300 मिसाइल के भी अब कामयाब इंजाम के साथ अखंजी की तवील फासला आला दुरुस्ती की सलाहियत एक नए दर्जे तक पहुंच गई है।
1: कनाडा यूक्रेन को फिजाई दिफा का एक इंतहाई अहम पैकेज और इसके साथ साथ तवानाई की सनत के लिए भी मदद फराहम करेगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमिर जेलेंस्की ने वजीर अजम मार्क कार्नी से मुलाकात से कबल ये बात कही। जेलेंस्की ने कहा कि फिजाई दिफा का यह पैकेज इंतहाई अहम है, लेकिन उन्होंने इस इमदाद या तवानाई के शोबे के लिए कनाडा के तयशुदा मनसूबों के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से कनाडा यूक्रेन के लिए मजमूई तौर पर 18.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की इमदाद का आज़म कर चुका है, जिसमें 6.1 अरब डॉलर की फौजी इमदाद भी शामिल है।
0: अमरीकी महकमा खजाना ने इक्तसादी बाइकॉट ऑपरेशन के तहत ईरान को माली मामला फराहम करने वाले एक बड़े बैन अवी खुफिया नेटवर्क पर कड़ी पाबंदियां आयद करती हैं। इस कार्रवाई के नतीजे में मुख्तलिफ मुल्क में फाल मुतद अफराद इदारों के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। ईरान के सासों का कंट्रोलिंग दफ्तर की तरफ से जारी करदा ईरान में मुताबिक पाबंदियों का दायरा इंतहाई वसी है। ब्लैक लिस्ट की फहरिस्त में कतायब हिजबुल्लाह के आला कमांडर्स पासदान इंकलाब को असलाह फराहम करने वाली कठपुतली कंपनियां तेल की आमदनी लुबनानी हिजबुल्लाह तक पहुंचाने वाले सराफा खाने और दीगर मालती नेटवर्क के सरगना शामिल हैं।
1: फिलिपाइन के फायर फाइटर्स मनीला से मगरबी सुबह पलावान जाने के दौरान आग लगने से 5 अफराद के हलाक होने, 80 से ज्यादा अफराद के लापता होने वाली एक फेरी बोट जो कि मुकम्मल तौर पर जल चुकी है में दाखिल हो चुके हैं। इमदादी टीम बुध की रात लगी आग के एक दिन से ज्यादा अरसे के बाद बोट में दाखिल हो सकी, क्योंकि घने धुएं और शदीद गर्मी की वजह से पहुंचने में उन्हें ताखिर हुई थी। फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने लापता अफराद की तादाद को 86 से कम करके 84 कर दिया है। बाद अजां तस्दीक के बाद मालूम हुआ कि फहरिस्त में 2 अफराद बोट पर मौजूद नहीं थे। कुल 43 अफराद को बचा लिया गया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक फेरी में 117 मुसाफिर और अमले के 17 अरकान मौजूद थे। बच जाने वालों में से रिचर्ड मार्सिलियानो ने जीएमए न्यूज़ को बताया कि उन्होंने इब्तदा में हल्का सा धुआं देखा जो तेज़ी से भड़क उठा और सेकंडों में फेरी में फैल गया। उन्होंने कहा कि वो और दीगर मुसाफिर तकरीबन 2 घंटे तक मदद आने तक समंदर में तैरते रहे। दरियासना लापता मुसाफिरों के रिश्तेदार मनीला में शिप ओनर के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और मालूम का तकाजा करते रहे, क्योंकि यह दफ्तर की किसी की भी माफ़ कीजिएगा क्योंकि यह दफ्तर किसी की भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। फेरी कंपनी ने कहा है कि वो वाकई तफ्तीश करने वाले हुकूमती हुकाम के साथ पूरी तरह तआवुन कर रहे हैं।
0: रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 11 रुकनी ब्रिक्स सरपरा इजलास के जिसमें मशरक वस्ता और यूरोप में जंगों के साथ साथ माशी मुश्किल के मामला नुमाया रहने की तवक्को की जाती है में शिरकत की गर्ज से भारतीय दारकूमत नई दिल्ली पहुंच गए हैं। भारतीय सफारती राय के मुताबिक पुतिन रानी सदर मसूद पजिशान जुम्मे से शुरू होने वाले 2 रोजा इजलास के दौरान भारतीय वजी अजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। रूसी खबरसान एजेंसी RIA नोवस्ती की नशकदा वीडियो के मुताबिक पुतिन नई दिल्ली के पाम एयरफोर्स अड्डे पर उतरे। चीनी सदस्य के लिए 2019 के बाद भारत का पहला दौरा होगा। मुतनाज़ हिमालयी सतह पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 6 साल पेश होने वाले मोहलक फौजी झड़प के बाद हरीफ पड़ोसियों के दरमियान मुहतात नरमी की जान सबसे बड़ा अहम कदम तस्वर किया जाता है।
1: स्विट्जरलैंड के जुनूब मशरकी इलाके ग्राबॉन्डन में एक होलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। बताया गया है कि सोश और जरनेस के दरमियान पहाड़ी रास्ते पर नैदरलैंड्स के सयाहों को ले जाने वाली एक मुसाफिर बस उलट गई। इस हादसे में कई लोगों की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। यह टूर बस तकरीबन 48 मुसाफिरों को लेकर ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड के एक रोज़ा मालूमती दौरे पर थी। बस के एक हिफाजती बाड़ से टकराने और सड़क के किनारे उलट जाने के फौरन बाद इमदादी कार्रवाई के लिए मुतअद्दद एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जाए वकूआ पर रवाना कर दिए गए हैं। टूर ऑपरेटर के हुकाम ने ताहाल हलाक और जख्मी होने वालों की हतमी तादाद के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात फराहम नहीं की हैं, क्योंकि जाए वकूआ पर बड़े पैमाने पर इमदादी काम अब भी जारी है। स्विट्जरलैंड के सदर गाय पारमेलन ने इस हादसे पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए हलाक होने वालों के खानदानों से ताज़ियत की है और वाकये की वजूहात जानने के लिए एक जामे तहकीकात शुरू करने का

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: बाइकार की तरफ से कौमी मुनफरद और पर तैयार करता खंजीर जंगी तैयार अपने ऑपरेशन साहितों को बेहतर बनाने तवील फारसी

0: बैन किया है।
1: जिन्हें कांगो के मशरक सूबे जनूबी क्यों के तहत हुकूमत बोकावो में लगने वाली बड़े पैमाने की आग में हलाकतों की तादाद बढ़ गई है। यहाँ का दो जिला के चेमपोंडा मोहल्ले के घर में शुरू हुई, देखते देखते तेज से फैलते हुए आसपास के दो प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच गई। लकड़ी के ढांचे की बिना पर आग की लपेट में आने वाले उजामा फोरहावा प्राइमरी स्कूलों के इलाकों में तलबा की तादाद 29 हो गई है। हुकाम के मुताबिक 25 तलबा जख्मी, जिनमें से 4 की हालत तश्वीशनाक है। आग के नतीजे में स्कूल की दोनों इमारतें मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गई, जबकि मोहल्ले के 300 से ज्यादा घर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके साथ ही इस तुर्किया से खबरें खत्म। तो आइए सामिन अब तान ताश्री की आवाज में एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं हर हाल दे।